Namaste, Sasriyakal, Unkaruskat, Salzburg. Okay, thoda sa technical wajuhat ke baais jo hai verbindung wo sahi nahi thi. So, isliye maine so pehle gana chala diya tha. So, here we go. I am Nimra Alam and you are hearing Pak India Express. Ek baar phir se, I am there with a new program. The program is going to be full of energy like it is always, and this show is going to be the last show before Ramadan, because afterwards we are going to play all the kalams and all the Sufi stuff and hamde aur nate aur is tarah ki cheeze hum chalane wale hain, aur hum bahut zyada Ramzan ke bare mein aur Islamic cheezon ke bare mein baat karne wale hain. Maine bahut zyada zakhira ikattha karke rakha hai cheezon ka jo main aapke sath discuss karna chahti hu Ramzan special mein. We are going to have two Ramzan special shows. The one is going to be, inshallah, one is going to be on the 17th. I don't know it's not going to come into Ramzan. So, but still, I want to talk about all those, kuch kisse kahaniyon ke baare mein baat karenge jo Islam se related hain. To 17th ko hamara agla show hoga, aur uske baad hamara ek aur show hoga, that's going to be on the 10th, aur uske, on the 3rd, and 17th of March ka hamara show jo hai wo bhi Ramzan special hone wala hai. Ab isme do cheeze hain, ya to main teenon shows jo hain wo Ramzan special kar loon, because 17th bilkul Ramzan se pehle hai, aur yeah, teenon kar lete hain, theek hai, because I have so many things jo main aapke sath discuss karna chahti hu, because main aajkal podcast sun rahi hu jo ke bahut hi ekdam dimag phaad dene wala hai, aur is wajah se main chahti thi ki main aap logon ke sath bhi us bare mein baat karu, aur let's do some amazing and full of energy and full of knowledge shows in Ramadan also. It's going to start on 18th or 19th, inshallah, or it's going to be till 20th or 19th or 20th. Let's see how it goes. But very excited about Ramadan, because this time Ramadan is going to fall in winter, almost winter. And the summertime is going to change at the end of March. That means hamara roza is going to be only for like, what, only till 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock. So it's going to be very interesting, because mere jaise log jab zyada kaam karte hain to wo 4 baje tak kaam karte hain, aur 5 baje aapka roza, 5:30 baje aapka roza khul raha hai. Aajkal maghrib itni jaldi ho jati hai. Maine pichle dinon kuch roze rakhe Rajab ke, Shawwal ke, aur us time par aapko pata bhi nahi chalta, Shawwal ka hai maine तो मैंने रोज़े रखे अभी, तो पिछले दिनों मुझे पता भी नहीं चला कि अच्छा मतलब टाइम गुजर गया है. तो आई होप कि आप सब लोग का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरे, और आप लोग अपना सब तैयारी करके रखें, समोसे पट्टियाँ वटियाँ सब मंगवा के रखें, फ्रिज भर लें, और लेकिन पूरी कोशिश करें कि हेल्दी तरीके से खाने बनाएं और हेल्दी रहें. और असल मकसद जो है वो है रमज़ान में इबादत करने का. सबको दुआओं में, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, खुद से मोहब्बत करें, दूसरों का ख्याल रखें. और इसी नोट के साथ हम लोग अपना गाना आगे कंटिन्यू करने लगे हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग. भाई साहब, हियर वी गो. एंड यू हैव टू नो, ऑल दोज पीपल हु लिसन टू मी रेगुलरली शुड नो कि ये पार्ट बेस्ट पार्ट क्यों है. हियर वी गो. अभी थोड़ा म्यूजिक है. ओके, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है.

अरे वाह, गाना इतना लंबा है कि उसके अंदर ऐड आ गई भाई साहब। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा गाना चलाने लगी हूँ। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एंजॉय कीजिए। हियर वी गो, रिज्यूम। जी हाँ,

0: सो हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे बॉर्डर का बॉर्डर टू का गाना संदेश से आते हैं. और क्यों अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ओके कि वो वाला पार्ट सबसे बेस्ट क्यों होना चाहिए. व्हाई डू आई ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन माय फेस व्हेन आई लुक व्हेन आई लिसन टू दिस पार्ट. दैट्स फॉर यू टू नो एंड या नहीं मजाक कर रही हूँ. इट्स दिलजीत्स पार्ट एंड आई एक्चुअली सीरियसली डिडंट नो दैट ये दिलजीत का पार्ट है. और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि डिड यू हियर जहाँ पे दिलजीत का आता है ना. आई वाज लाइक व्हाट एंड ही वाज लाइक या दिलजीत ने भी तो गाया है. एंड आई वाज लाइक ओ नहीं यार हाउ कैन आई मिस दैट. एंड मुझे पहले बड़ा थोड़ा सा वो झटका लगा दैट आई डिडंट रियलाइज इट. उसके बाद फिर मैं क्या कोई गाल नहीं पाई हो जाता है कोई नहीं कोई नहीं. अच्छा जहाँ हम म्यूज़िक और इन चीज़ों की बात करें तो एक चीज़ जो पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एकदम शौक के सूरत में आई वो थी दैट अरिजीत एक्चुअली लेफ्ट प्लेबैक सिंगिंग. इफ़ यू लिसन टू द बॉर्डर का भी गाना तो उसके अंदर थोड़ा सा वो वियर्ड लगता है बिकॉज इट्स नॉट अरिजीत फोर्टे और इट्स नॉट लाइक यू कैन एक्चुअली हेयर दैट द गाय वॉज नॉट फीलिंग इट और ही इज़ नॉट क्या कहते हैं वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाने वाला लहू यू नो बॉयल करने वाला सिंगर. ही इज़ लाइक जो जिसकी आवाज़ में दर्द है और जिसकी मतलब वो मैंने एक मीम पढ़ा था कि अरिजीत भाई ने देशभक्ति के सॉन्ग में भी एक्स की याद दिलवा दी. तो वो एक्चुअली कुछ वो वाला ही सॉन्ग ऐसा लगता है दैट वही वाली फील आती है कि एक एकदम से रोमांटिक गाना शुरू हो गया है. बट ऑब्वियसली इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड ऑब्वियसली ही सिंग्स ऑलवेज वेरी वेल एंड ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग. सो इट वाज अ शॉकर दैट ही इज़ लीविंग. देर आर मेनी सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत दैट आई जस्ट लव. चन्ना मेरिया हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ इट लाइक सीरियसली. चन्ना मेरिया का एक वो यू नो उसका जो एक वो बनाया ना क्या कहते हैं उसको मूड बनाया ना वो अरिजीत ने ही बनाया. तो वो एक वो जो आपको दर्द फील होनी चाहिए ना गाने सुन के वो एक्चुअली दर्द आपको फील होती है. बल्कि अरिजीत के ऐसे सॉन्ग्स होते हैं कि सिनेरियोस आप खुद बनाने लग जाते हो दिमाग में ऑल्दो आपके साथ वो ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं होता. सो दीज आर द काइंड ऑफ दिस इज़ द पावर म्यूज़िक हैज़ बिकॉज आपको वो वाले इमोशंस फील करवाता है जो आपने कभी फील भी नहीं किए होते हैं. एंड दैट इज़ लाइक crazy how powerful music is. So इसी वजह से हम चलाने लगे हैं अरिजीत के कुछ अच्छे सॉन्ग्स जो मुझे बहुत पसंद हैं. आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा यूनिवर्सल होने की कोशिश करूँ बट मैं बायस टू बिकॉज ये मेरा शो है. तो मैं वो वाले गाने चलाने लगी हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं. द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रियली लाइक इज़ फिर भी तुमको चाहूँगा. आई रियली रियली लाइक दिस सॉन्ग. आई वॉन्ट कि आप लोग सुनिए इंजॉय कीजिए.
1: कुछ ऐसा हो जी हाँ तुम
0: आवाज़

सो हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे हैं पाक इंडिया एक्सप्रेस. उनमें हूँ निम्रा आप लोगों के साथ और हम लोग बात कर रहे हैं सारी कूल हैपनिंग्स की जो अभी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं. उसमें से एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी दैट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा था भाई साहब पाकिस्तान के अंदर, एंड पाकिस्तान समहाउ मैनेज टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट मैच लाइक T20. Are you kidding me? I was like, ये क्या हो रहा है. पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई हो क्या रहा है ये, मतलब ये पाकिस्तानी टीम ही है और ये वही सब प्लेयर्स हैं जिनको हम सदियों से जानते हैं, मतलब इट वॉज लाइक अनबिलीवेबल. ठीक है, लेकिन मैचेस बहुत मज़े के थे. मुझे बहुत कभी कभार फील होता है दैट मेरे बच्चे जो हैं वो उस तरह से म्यूज़िक उस तरह से जो क्रिकेट है वो नहीं देख पाते जिस तरह से हम लोग देखते थे जब हम छोटे थे. उस टाइम पर जो क्रिकेट होता था लाइक वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, देयर वाज सईद अनवर, यूसुफ, इंजमामुल हक, ऑल दोज बिग नेम्स. तो मुझे कभी कभार अपने बच्चों के लिए बहुत फील होता है कि उन लोगों ने उस तरह वाला क्रिकेट नहीं देखा जो हम लोगों ने देखा हुआ है. एंड आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि आगे जाके पाकिस्तान के हालात उस तरह के हों कि मेरे बच्चे भी आगे उस तरह से प्राउड हो सकें जिस तरह से हम लोग एक टाइम पे प्राउड हुआ करते थे. ऑल द सिचुएशन विद इमरान खान इज स्टिल द सेम, लेकिन आई जस्ट रियली होप विश एंड प्रे दैट सैनिटी प्रिवेल्स और चीज़ें जो हैं वो किसी तरफ अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें. या उम्मीद पे दुनिया कायम है. या अगर सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं. ठीक है, तो हाँ, तो ये बात हो रही थी. उसकी दूसरी तरफ इंडिया के मैचेस हो रहे थे. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो इतना कुछ देखा नहीं है, लेकिन अंडर 19 का हो रहा था वो मैंने ज़रूर देखा है, वो जो पाकिस्तान हारा आई थिंक दैट वाज द फाइनल मैच और समथिंग लाइक दैट. तो अंडर 19 का मैच मैं देख रही थी वो या और ऑब्वियसली अंडर 19 की या विमेन टीम की जब ऐसी चीज़ों की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, आपकी जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पर अच्छे खिलाड़ी निकालने के लिए किस तरह से इनक्रेज किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं. तो वो एक स्ट्रक्चर किस तरह का है उस पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं होता. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो एंड मतलब आखिरी दिन तक उनको जो है वो किया जाता है कि छोड़ देखेंगे देखेंगे देखेंगे. हर चीज़ पाकिस्तान देखे में चलती है. तो जी हाँ, तो क्रिकेट वाला अच्छी चीज़ थी, ये मज़े की चीज़ें थी जो या उसके बाद अरिजीत की जहाँ पे बात हो रही है तो अरिजीत के थोड़े से और गाने चलाते हैं बिकॉज़ मैं आप लोगों को बताई थी कि मुझे चन्ना मेरिया बहुत पसंद है. तो लेट्स प्ले चन्ना मेरिया और इट विल बी अ गुड काइंड ऑफ फेयरवेल टू अरिजीत. ऑल्दो ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ही विल स्टिल बी सिंगिंग द सॉन्ग्स, लेकिन आई थिंक वो अपनी प्राइवेट लेबल के साथ ही करने वाला है एंड ही विल नॉट डू प्लेबैक सिंगिंग बिकॉज इंडिया जैसे मुल्क में प्लेबैक सिंगिंग जो है वो एक्चुअली बहुत प्रोमिनेंट है. तो अगर किसी म्यूजिशियन को मशहूर होना है तो वो ऑब्वियसली एक सहारा प्लेबैक सिंगिंग का ही होता है. पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड साइड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन पॉप कल्चर और वहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितनी पॉप कल्चर और एल्बम्स और गाने और ये सारा कुछ है. और आजकल तो स्ट्रीम वगैरह भी हो रहा है. तो आई थिंक दिलजीत इज़ गोइंग टूवर्ड्स द साइड जहाँ पर ही विल बी रिलीजिंग हिज ओन एल्बम एंड डूइंग हिज ओन म्यूजिक एंड वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड क्रिएट म्यूजिक द वे ही वांट्स टू क्रिएट इट बिकॉज ही इज़ अ क्रिएटिव गाय एंड दैट वी हैव बीन सीइंग. पता नहीं कौन से ज़माने से, मैं छोटी सी थी जब से मैं अरिजीत की स्ट्रगल देख रही हूँ एंड ऑल दैट. तो हियर वी गो विद द वेरी वेरी क्लासिक number of Arijit Singh. Here we go.

Oh my God, that is Arijit Singh for you. मतलब आप अगर ये गाना अकेले बैठकर here we go. ये गाना अगर आप अकेले बैठकर अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर अकेले बस रात को सुकून से सुने, it can provoke so many emotions in you. It can heal so many broken things inside you. It can do magic with your feelings. मतलब Arijit Singh and those lyrics, it's like match made in heavens. Like seriously. और मुझे ऐसा लगता है कि आज का शो हम अरिजीत के बारे में ही करते हैं जितना हो सकता है, बिकॉज ही हैज़ सो मैनी सोलफुल सॉन्ग्स. इट्स नॉट दैट ही इज़ गोइंग ऑब्वियसली, बट स्टिल इट्स लाइक ही डिड प्ले बैक सिंगिंग. एंड आतिफ असलम जिस टाइम पर बैन हो रहा था और अरिजीत को एकदम से ब्रेकअप मिल रहा था, ब्रेक थ्रू मिल रहा था उस टाइम पर, ऐसा लगता था दैट यू नो ही इज़ लाइक ही डज अ लॉट ऑफ नेजल सिंगिंग और बहुत ज़्यादा आतिफ असलम को कॉपी करने की कोशिश है और इस तरह की चीज़ें. But the way he has brought emotions in songs, or जिस तरह से उसने उन चीज़ों को express करता है अपनी किसी भी चीज़ की feelings, वो something else. It is something else. And like, yeah, it's the same thing that's with Sonu Nigam, for example. Like Border mein the guzaren eh guzarne wali hawa, this thingy is like nobody can sing it better than Sonu Nigam. And usi tarah impactful singing agar uske baad kisi ne ki hai to it was Arijit, because although Shaan is a very good singer, Abhijit is a very good singer, Udit Narayan and all of those singers, they are very good प्लेबैक सिंगर्स, बट वो एक होता है ना एक इम्पैक्टफुल सिंगिंग, एक इम्पैक्ट डालना और लोगों को उस एक्चुअली उस दर्द में और उस फील में लेकर चले जाना, वो ओनली फ्यू पीपल कैन डू. एंड अरिजीत वॉज वन ऑफ देम और ही इज़ वन ऑफ देम. इसी नोट के साथ हम लोग एक और गाना चलाते हैं और उसके बाद जब आएंगे आप लोग वापस तो और भी कुछ बातें करेंगे. और मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं साउथ की, यस, हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे. मैं वो चीज़ें भी आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज साउथ द वे दे आर डूइंग सिनेमा, इंडिया में वैसा कोई भी नहीं करा, तो वी हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स. हियर वी गो, दिल संभल जा ज़रा और आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए, बिकॉज इसमें भी बहुत इमोशन है. या फिर कबीरा चला दूँ. मैं देर आर सो मैनी सॉन्ग्स के समझ नहीं आती कि क्या चलाएं. कबीरा सुनते हैं, ठीक है? हियर वी गो. हाय.

Oh my God, such good songs. और मैं अरिजीत के सॉन्ग्स लगाते लगाते साथ में और गाने चलाना शुरू हो गई हूँ जो मुझे बहुत पसंद है. तो मतलब हम दोबारा आते हैं अरिजीत की तरफ. और अरिजीत का एक सॉन्ग जो मुझे यहाँ पर भी बहुत लोगों ने पूछा कि ट्रांसलेट करके बताओ उसका क्या मतलब है, वॉज द एड शीरन वाला सॉन्ग. एंड एवरीबडी सैफायर एंड एवरीबडी वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग बिकॉज द सॉन्ग इज़ सो गुड. और इस वजह से मैं चाह रही थी कि ऑल्दो मैं इंग्लिश गाने नहीं चलाती हूँ बट लेट्स प्ले एड शीरन सॉन्ग इज वेल दैट्स Fire and uske andar obviously Arijit is there and he gave his voice and I think the areas there are roaming around wo bhi areas wahi hain jiske andar jahan pe wo rehta hai and I was watching a video about Arijit and how he lives and I think he's like sukoon dhoond raha hai. Aur music ka asal maqsad bhi yahi hota hai ki aap sukoon dhoond rahe hote ho. To mujhe aisa lagta hai ki jab sunne walon ko itna sukoon milta hai to jo kar raha hota hai usko kitna sukoon mil raha होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उसी सुकून की तलाश में है और वहीं पर वो बुलाता है अपने घर में और वहाँ पे वही अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करता है. और ये सारी स्टोरी जो मैं सुन रही थी मुझे वो

So we are back and how good was that? So हम लोगों ने आज बहुत बैक टू बैक अरिजीत के सॉन्ग्स लगाए और उसके बारे में बातें की और उन चीज़ों के बारे में बात की जो अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चल रही थी. साउथ की कुछ मूवीज़ हैं जो नेटफ्लिक्स पे और मूवीज़ देखी हैं मैंने. या नेटफ्लिक्स पे एक मूवी थी दैट वाज हॉरर, मुझे उसका नाम याद नहीं है और अगर मुझे नाम याद भी हो तो मैं उसको प्रोनाउंस सही नहीं कर सकूँगी तो इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट. बट देर वॉज अ हॉरर मूवी और वो देखी हम लोगों ने एंड इट वॉज़ वेरी गुड. इट वॉज़ लाइक अ हॉरर मूवी जिसमें कुछ गंद पिल नहीं दिखा रहे हैं और वो मूवी देखकर मुझे एक्चुअली फील हो रहा था दैट ओके आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड नाउ. तो दैट वाज अ गुड मूवी और अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है तो वो ज़रूर देखिए. और उसके साथ में आई वॉच्ड साउथ और तमिल की मूवीज़. आई फील सो बैड दैट आई डिडंट राइट द नेम्स और मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए अपने वो सारी सजेशंस जो हैं वो नाम लिख लेने चाहिए बिकॉज दिस द मूवीज़ आर समटाइम्स सो गुड. एंड देर वॉज वन मूवी दैट आई वॉच्ड, इट वॉज ऑल्सो फ्रॉम साउथ एंड इट वॉज सम माया समथिंग, आई फॉरगॉट, मलयालम की मूवी थी एंड द नेम वॉज there was something like Maya and the movie was so good. Like it was such feel good movie, like such feel good movie. I just like cried my heart out and mujhe wo movie dekhkar actually aisa laga that there was something that was healing inside me and I was like so it touched me. Seriously, that movie touched me. And next time जब हम लोग बात करेंगे तो although हम लोगों का रमज़ान स्पेशल होने वाला है बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो मूवीज़ के नाम लेकर आऊँ because the movie was so good. Then the name मुझे अच्छे से याद नहीं है but it was I think Sarvam Maya. I think the name was Sarvam Maya. अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज़ Sarvam Maya ज़रूर देखिए.

और इट वॉज लाइक इवन टिल द लास्ट सीन द मूवी विल गिव यू सच सुकून द एग्जैक्ट थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अरिजीत. ऐसी मैं जब भी कभी कोई मतलब मैं इंडियन मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखती. इवन मैंने धुरंधर अभी नेटफ्लिक्स पे आ गई मैंने नहीं देखी है बिकॉज मुझे मूवी नहीं देखनी है बिकॉज वो अच्छी मूवीज़ नहीं बनाते हैं यू नो. और मुझे साउथ की मूवीज़ कोई सी भी हो मलयालम हो या फिर कोई और लैंग्वेज में हो तेलुगू हो कुछ भी हो मैं आंख बंद करके देखती हूँ. मतलब सीरियसली मैं माय हस्बैंड आस्क्स मी ओके हम कोई साउथ की मूवी लगा रहे हैं और मैं उसी वक्त वो मूवी देखती हूँ बिकॉज मुझे पता होता है कि द मूवी इज़ गोइंग टू बी आर्टिस्टिक द मूवी इज़ गोइंग टू बी नॉट एक टाइम वेस्ट द मूवी इज़ गोइंग टू बी आर्ट द आर्ट दैट यू स्टडी इन यूनिवर्सिटीज़ और थिंग्स लाइक दैट. वो मूवी की स्टोरी राइटिंग इतनी अच्छी होती है उनका उनका डायरेक्शन इतनी अच्छी होती है मतलब आप एकदम दंग रह जाते हो कि भाई हो क्या रहा है. एंड आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट द साउथ सिनेमा नॉट ओनली लाइक मलयालम और नॉट ओनली लाइक तेलुगू और समथिंग आई कैन नॉट स्पेसिफिकली से कि कौन सा वाला बट द होल थिंग दे मेक आर्ट. और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर देखिएगा. इसी नोट के साथ हमारा शो जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है एंड आई वांट टू प्ले आखिर में सुकून दैट्स अ सॉन्ग दैट अरिजीत सिंह अभी और सलीम सुलेमान ने कंपोज किया है और आई रियली लाइक सलीम सुलेमान्स मेलोडीज. समटाइम्स मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है लेकिन समटाइम्स इट्स लाइक वेरी सोलफुल और इस एंड देन अरिजीत सिंगिंग एंड एवरीथिंग. तो आई रियली वांटेड टू प्ले दैट सॉन्ग अभी लास्ट में शो रैप अप करते हुए. हम लोग हम मिलेंगे आप एक दूसरे से लाइक मिड ऑफ फेब्रुअरी और आप लोग सब अपना ख्याल रखिए. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे इस साल 10 ईयर्स कम्प्लीट हो रहे हैं शो के एंड मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी सिंगल टाइम वाई I am doing that and the peace and the sukoon I get whenever I am at Radio Fabric. I'm like always being thankful because this has actually worked like a wonder for me also. Because jab aap akele hote ho to aapko kuch sukoon chahiye hota hai, koi sahara chahiye hota hai. Wo sahara mere liye has always been this program. And thank you so much for all the feedback you give me. Like isi tarah aage bhi feedback bhejti rahi. Aur thank you so much for understanding jab kabhi main shows nahi kar paati. हूँ तो उसके बावजूद मुझे हमेशा फीडबैक आप लोगों का आता है. एंड यू लाइक मैं लोगों को जानती भी नहीं हूँ मुझे ये भी नहीं पता होता कि कौन है क्या है लेकिन छोटी सी एक लाइन भी अगर लिखी हो तो मतलब इट मेक्स माय डे एंड थैंक यू सो मच. एंड इसी तरह सपोर्ट करती रहिएगा एंड हियर वी गो विद सुकून. एंड आपका जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे आप सबको मेरा दुआ सलाम और प्यार पहुँचे. अस्सलाम वालेकुम साल्ज़बर्ग एंड हियर इज़ अरिजीत सुकून फॉर यू.